जोजोलपा थौ नेपाल सम्ब छिन्छसव पी खुद गुङ लागा सप्तमी थु रेडियो नेपाल ख आनादिस जिरुबी पाखे नेपाल भाषा या समाचार रसुवाया भटेको सी खुसी वोगु विनाश जाको खुसी बाया हुने आतक झिन्निस निनिमा सिमलुया वगुदु गुकी रसुवाया थासे सचिव निन हेमा नुवा कोटे सचिव ङेङमा धादिङे खुइमा चितवने सोसव पी च्यामा गोर्खा खुइ च्यामा तनुहुई सुई च्यामा नवलपरासी पूर्वे निसव झिन च्यामा नवलपरासी पश्चिमे सचिव गुई पेमा भारते लुया वोगु झिम्पेमा सीमा नवलपरासी लल हागु याना मुक्क झिन्निस निनिमा सीमा आतक लुया वोगु ख गुई ङ्यामा सिया सिमा थतिथि पिन्ता लला धुङ्क गुदुसा लुया वोगु सिमाया मसिका नीति डिएनए नमुना मुङ्के गु निसे मागु कथया प्रक्रिया पुवाङ्क आतक सचिव चे छमा सिया सिमा चे छमा ठिका त आनन्दको निर्णय दिस डिएनए नमुना मुङ्का मुङ्क गु निसे मागु प्रक्रिया पुवाङ्क आतक सचिव चे छमा मिसा निसो खुइ सोमा मिजौँ व पेसौ सुई च्यामा मसिका मजुगु याना मुक्क च्यास व चे निमसिया व्यवस्थापन चाल हना याना त अकुदु अथेना मसिका मजुगु गुस ङे सोमा सिमाया धल नेपाल प्रहरी वेबसाइट अपलोड याना त अकुदु प्रधानमन्त्री वरेन्द्र शाह जलवायु ह्युपा नपा हिमालय लाग्या जोखिम उपया वना सङ्घ कनादिगुदु प्रतिनिधि सभा या मिगया बैठकके भोटे कोशी खुसी बाँ लिचोला पिन्ता मालेता उद्धार हो राहत या विशेषण सरकार याना सङ्घु ज्या या विशेषण जानकारी याका दिसे प्रधानमन्त्री शाह विज्ञते रसवाया भोटे कोशी खुसी थोए भदौ 10 गते वङ्गु खुसी बा हिमालय लाग्या च्वापु लुहया हिम पहिरो सम बोलङ्गुली थो यो कोहे त धङ्गो हात्या जुगु धया दिल प्रधानमन्त्री शाह थो झाका सकल सचेत जुई मागु नाप्नापा जलवायु उपाय हुने फेमाला चोङ्गो हात्या विशेष अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय नापा सेन लागु कथन ह्यबे मागु यी वोगु कना दिल सरकार सङ्कट थो इले मन क्वातुक भलसा बी मागु भला कुबिया ज्याना चोनागु नेथना दिसे प्रधानमन्त्री शाह खुसी बा या कष्ट रसुवा नुवाकोट धादिङ्या जक मजुसे सकल नेपामी तेगु दुख जागु यी जुगु कना दिल मनु तेता मालेगु कापा जुपिन्ता मा कथया वासया नाचोनागु कना दिसे प्रधानमन्त्री शाह खुसी बा छेम्बु तनाचो पिन्ता थथया नीति अस्थायी स्थायी व्याया नितिन सरकार ज्या नाचोनागु कना दिल प्रधानमन्त्री शाह मसिका मोजु मह सिम्हा या नीति कानुन कथम वैज्ञानिक प्रक्रिया पुङका चाक्वे सुरक्षित कथम व्यवस्थापन या नागु कना दिसे डिएनए नापा मेगु मसिका या त ग्वाली यागु लिधंसा सुरक्षित या गुले मसिका जुई साथ छेज या त लला फैगु कना दिल खुसीबास लिचो लागु लागा दिना चङ्गु मत व संचार सेवा सुचारु यायता निनु निसे ज्याना चनागु कना दिसे प्रधानमन्त्री शाह आतक गुई च्यागु प्रतिशत लागा संचार सेवा लला धुनागु धया दिल अथियाना नुवाकोटे चेङ्यागु प्रतिशत धादिङे गुई च्यागु प्रतिशत व रसुया पिगु प्रतिशत मत सेवा पुनस्थापन जुई धुङ्कको प्रधानमन्त्री शाह जानकारी बिहा दिल खुसीबास भोटे कोशी व त्रिशुली कोरिडोर या जलविद्युत आयोजना व सौर्य परियोजना तधङ्गु हाठ्या ठेङ्का बिगु कना दिसे प्रधानमन्त्री शाह मत उत्पादन याना चङ्गु च्यागु आयोजना स निसव चे छगु मेगावाट व सोसव चे च्यागु मेगावाट क्षमता या नीति देका चङ्गु पेङ्गु आयोजना सेङ्का बिगु व देखेगु नीति तधङ्गु ढेबा तुइगु कना दिल खुसी बासन लिचो लागु लागाया थिथि थासे सडक डिना चङ्गु उकियाता देखेगु ज्याना जुया सङ्गु कना दिलसा भदौ 10 गते शनिल तक्क मालिगु उदार्या नीति थिथि खुइगुगु उडान पाखे सोसो ङे छमा कापा जुपी व अलपत्र लापी मनु त्यता उदार यागु प्रधानमन्त्री शाह कना दिल अथियाना नापाङ्गु दिहे लिचो लागु लाग्या सोधो यहाँसम्म सीत सुरक्षित थासे अस्थायी आवास व्यवस्था यागु नापा च्यागु ट्रक राहा जोल लिचो लागु थासे थेङ्कागु प्रधानमन्त्री शाह सदन या त जानकारी बिहा दिल प्रधानमन्त्री शाह आयागु हाठ्या पूर्वानुमान यागु शिवे पिनेया जुगुले माले व मालेगु उद्धारे हाठ्या खने दया चुङ्गु कना दिसे थिथि जलविद्युत आयोजनाया सुरुङ तेके उद्धार ज्याया नीति भारतीय चिनिया कोरियन विज्ञ तेगु पुच ज्याना चुङ्गु कना दिल प्रधानमन्त्री शाह ना व भेटिया हुने
नापा इसका भेटर हेलिकप्टर नापाया उद्धार उपकरण यङ्केताया हात्या जुया चोङ्गुली छुन लिपा लासन विचलित मजुसे ज्यायना चोङ्गु ज्यायना चोपिन्ता प्रोत्साहन जुइगु याना ग्वाली याय त सकलदथे इन आफ्ना याना दिला प्रधानमन्त्री सहा आ प्रधानमन्त्री विपद राहत कोषे खुगु अर्ब चे च्यागु लाख ढेवा मौजा दुगु आ मेगु खुइ छगु लाख पी छदो अमेरिकी डलर सिबे उप ढेवा वोगु सदन याता जानकारी बिया दिलस प्रधानमन्त्री शाह नेपाल यता विपद व्यवस्थापन चीन भारत पाकिस्तान अमेरिका जापान बेलायत नापाया मित्र राष्ट्र एसियाली विकास बैंक विश्व बैंक युरोपेली युनियन संयुक्त राष्ट्र संघ नापाया अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार त पाके वोगु ग्वाली याता लसकुसेना दिल प्रतिनिधि सभाया मिगया बैठके रसुवाया भोटेकोसी खुसी वगु विनाशन जागु हाठ्याँ ठ्याङ्कगु छेतियाता विशेष प्रस्ताव कथम पारित यागुदु बैठके दुख पोङ्कु दुःख पोङ्केको प्रस्ताव न्यवया दिशे सभामुख डोलप्रसाद अर्याला फुक्क तहया सरकार राजनीति दल नागरिक समाज र राज्य फुक्क संयन्त्र छेला मालेता उद्धार घापा जुपिन्ता वास पुनस्थापना प्रबन्ध मिले आयता सरकार या त उजौँ बिया दिल सभामुख अर्याला जलवायु उपाय हुने नेपाल दे देश हात्या फया चोने मागु नेथना दिशे जलवायु हुपास बोलङ्गु क्षेत्रीय नोक्सानी या त अन्तर्राष्ट्रिय बहसे नेपाल थ्वाथुक सेनलाक हने मागुकना दिल थुया न्यमेग्या बैठके राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपा संसदीय दलले उपनेता गणेश पराजुली संकट इले जुगु कमजोरी या त स्वीकार या सरकार मनुतेगु जीवन रक्षा नीति जुई मागुकना दिल अथियाना नेपाली कंग्रेस संसदीय दलले नेता भीष्मराज आङदेम्बे मालेता उद्धारे फुक्कन सिबे हाठिया जुया चङ्गु विषय सुरुङ दुने लाना चोपी मनु ते त उद्धार जु उद्धार यागु जुगुले थुकी पश्चिम फको नुनुगु लपुता मालेता सरकार या ध्यान कोसाला दिलसा नेकपा एमाले संसदीय दल या नेता रामबहादुर थापा संकट या हाठ्या फेट फुक्क राजनीति दल नागरिक समाज विज्ञ त दुथ्यागु सर्वपक्षीय सर्वदलीय संयन्त देखे त सुझाव बिया दिल अथ्याना नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी संयोजक पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड विपद या हाठ्या फेट सुङ्गु तहया सरकार दति समन्वय जुई मागु कना दिलसा श्रम संस्कृति पार्टी सांसद ध्रुव राज राई तना चोपी मनुतेता मालेता उदारो घापा जुटमिन्ता वासके विशेष ध्यान बित सरकार या ध्यान कोसाला दिल अथ्याना राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रापरपाया संसदीय दलया नेता ज्ञानबहादुर साही विपदे वाँ उही त दोपा बिगु मजुसे खुसी भाषण लिचो लाग पिन्ता उद्धारो राहते सकल छप जुए ज्याय माग कना दिल प्रतिनिधि सभा मेगु बैठक थौन हिने छताइले चोनी गुजुगुदु त्रिशुली खुसिया कटानिया हुने पृथ्वी राजमार्ग सवारी आवागमने दिना चोने धुङ्कानी ये हेटौँडा स्वाईको वैकल्पिक लपिया नुगु रुट वा ज्या धल सार्वजनिक आगुदु बर्खा इले सडकका अवस्था त ध्याने तसे ये सोनीको ट्राफिक प्रहरी कार्यालय वा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरिया समन्वयसँग वैकल्पिक रुट कोची गुख सोनीका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय या प्रवक्ता नापा प्रहरी उपरीक्षक नरेश सुवेदिया कथा यस हेटौँडा नीति वनिगु सवारी जोला नीति फर्फिङ फाखेल कुले खाने भीम फेदी या रुट देखा बिगु दुसा अथियाना हेटौँडास यहाँ छुटे जुइगु चिदङ्गु सवारी जोला भीम फेदी कुले खाने सिस्नेरी दक्षिण काली जुसे यहाँ दुहाँ वैगु कथम ज्यादल देखगु दु अथियाना त धङ्गु वा मालबाग सवारी जोला या त चापागाउँ भट्टे डाँडा ठिङ्गन जुसे हेटौँडा थिङ्किएगु लम्फु देखा बिगुदु पृथ्वी राजमार्ग कथम धादिङ या कृष्ण भिरे दिना चोङ्गु सवारी झोलन्त मोमो जुया चोङ्गु लि सामान्य अवस्था सो घौ बिगु हेटौँडा ये लम्पी आ यहाँ घौ बिता सङ्गु जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मकवानपुर या ट्राफिक प्रहरी प्रमुख प्रहरी निरीक्षक रमेश विष्ट जानकारी बिहा दिल भएका कथा हेटौँडा ये स्वाईगु वैकल्पिक लम्पु ची धङ्गुलि सवारी जोलङ मोमो जुया चोङ्गुलि एम्बुलेन्स नापाया मजी मगागु हल जोलङ या त थ्या बिया चोनागु थ्या दिगु दुसा झिम्पे घौ झिम्पेङ्गु शीर्तक या ची धङ्गु सवारी जोलङ हेटौँडा पाखे भीमफेदी कुले खाने सिस्नेरी दक्षिण काली जुसे ये पाखे ह्याका चोनागु वेकला जानकारी बिया दिल थतेयाना ये सोनी ग स नसा जोला नापाया मजी मगाको जोला आपूर्ति अफुके त झिन्नीगु चक्का तकया मालबाग सवारी जोलङ या त मकवानपुरिया भैँसे स त्रिभुवन राजपथ जुसे ये पाखे ह्याकेगु व्यवस्था मिले नागु जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष सुबेदिन जानकारी बिया दिल वेकया कथ ये स हेटौँडा वैगु
मालवाहक जोला तेता येलया एकांत कुना छम्पी टीका भैरव जुसे कान्ति लोक पस यहाँका चोनागु जानकारी बिहा दिलसा मालवाहक सवारी जोल छखेर यहाँके गु व्यवस्था नमिले नागु कना दिगुदु अथ्याना निगुल नपुग ग्यास बुलेट यहाँके मबिगु व ग्यास जागु सिलिन्डर कुबिगु ट्रक एटा त्रिभुवन राजपथ यहाँके गु प्रशासकीय अधिकृत सुवेदिङ कना दिल पृथ्वी राजमार्ग डिने डी ढुङ्कानी ए वैगु वनिगु सवारी जोल मकवानपुरिया वैकल्पिक सडक केन्द्रित जुबले लिपाङ्गु दिने उगु लपुई सवारी जोल मोम जुया चङ्गु ख जलस्रोत तथा जल विज्ञान अनुसन्धान केन्द्र खुसीबा पूर्वानुमान महाशाखा भोटे कोशी तुर्सिली नापाया जखया लागा मिगन लया सतह उपैगु आँखा झाँखा खुसीबा या सम्भावना आपलन दुगु धागुदु महाशाखा या बाढी विध सरस्वती विष्ण रसुवा नुवाकोटे जुया बा वनिगु खुसी तटीय लागा जलाखला पिन्त सतर्कता क घात वैक्ला इनाफेना दिगुख वैक्ला नेपाल चिन सीमा लागा लिक ताल देका चोङ्गु ताल न्यागु इलेन तज्या फैगुले मेगु सुच मैबुले तक्क सर्वसाधारण दथुई आपना सतर्कता क घात इनाफेना दिगु ख त्रुसिली खुसी वोगु खुसी बा हुने लिचो लागु नुवाकोटे विद्यालय त अनिश्चित इयातक इया नीति बन्द याना त अगुदु संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खड्गराज पौडेल भोटेकोसी खुसीबासमा पर्यटन लाग्या नेगु अर्ब ढेवासी उप क्षेत्र जुगु नापाङ्गु अनुमान यानागु कनादिगुदु ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ भोटेकोसी खुसीसँग सम्पर्क त्वा धपिन्ता मालेगु ज्या सरकार याना चुङ्गु कनादिगुदु कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोभिता गौतम नेपाल नीति बेलायती राजदूत रफ फेन नापा नाप्लना दिगुदु मन्त्रालय मेगो जुगु नाप्लाई ज्या वेकअपिङ दति जलवायु हुपाया हुने योगको दुःख जुया चोङ्गु थुकिया त तधङ्गु जोखिम नेपाल फेमाला चोङ्गु विशेष खलाबला जुगु धागुदु रसवाया भोटेकोसी व त्रिशुली खुसी वोगु भदौ 10 गते या विनाशकारी खुसीबासा लिचो लापी मनु त्यता राहत उधार नीति कर्मचारी सञ्चय कोष निगु करोट नेगु लाख आर्थिक ग्वाली यागु दुसा अथेयाना गुल्मी या खुगु स्थानीय तहसँग भोटे खुसी खुसीबास या नीति खुइ सोङ्गु लाख ढेबा प्रधानमन्त्री देवी उद्धार कोषे दाखिला यागुदु अथेयाना रसुवाया खुसीबा पीडित यता नवलपरासिया विनय त्रिवेणी गाउँपालिका सुई निगु लाख ढेवा लल हागुदुसा मकवानपुरिया भीमफेदी गाउँपालिका भोटेकोसी खुसीबा पीडित यता राहत उद्धार पुनस्थापना नीति न्यागु लाख ढेवा ग्वाली यागुदु अथेयाना रसुवा खुसीबा पीडित यता डोल्पाया सोङ्गु स्थानीय तह उद्धार राहत पुनस्थापना नीति न्यागु लाख नेदो आर्थिक ग्वाली यागुदु अथियाना भोटेकोसी खुसी वगु तधङ्गु खुसी बासन लिचो लापी मनु त्यता उद्धार व राहत या नीति बाँकी अतिथि सङ्घ संस्था त्यसँग ग्वाली यागुदु नेपाल गन्जे दुगु जय बागेश्वरी माध्यमिक विद्यालय खुसी बापडी त्या उद्धार व राहत या नीति छगु लाख ढेवा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोसे मुङ्का बिगु दुसा अथियाना सुना खरी रेस्टुरेन्ट प्राली नेपाल गन्ज खुसीबा या नीति ने छगु दो ढेवा ल लागुदु अथियाना नेपाल पत्रकार महासङ्घ बाँके शाखा खुसी बासन लिचु लापी मनु तेगु नीति राहत कोसे ने छगु दो ठेवा प्रधानमन्त्री राहत कोसे मुङ्का बिगुदु सा नेपाल प्रहरी अस्पताल रसवाया भोटे कोसिया खुसी बासन सीमा नेपाली हो विदेशी मनुया सीमा मसिकिएको नीति डिएनए प्रोफाइलिङ ह्याकगु दु खुसी बाया हुने तना चौपिन त नेपाली हो विदेशी मनु तेगु मनु तेमा छेज डिएनए परीक्षण पाखे लुया वोमा सिमह वो शरीरीय अङ्ग मसिकेता प्रहरी अस्पताल डिएनए प्रोफाइलिङ उलेज्या यादुङ कगुदु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मालपोत कार्यालय भैरवा रूपन्देही या तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कुमार आचार्य नापा न्यामासित मुद्दा दारी आगुदु थादुगु लाभ छेला लुटपाट यागु दोपस प्रहरी सोमासित जोङ्गुदु जोपिले ये महानगरपालिका सोह्र बालाजुया राजन अर्याल सोलो कुम्बुया आयुष राई व ये महानगरपालिका चौधया विशाल लामा पिन जुगु थागुदु जापान सरकार भोटेकोसी खुसीबास लिचो लापिन्ता थिति राहत जोल ललहागुदु नेपाल नीति जापान या राजदूत माएदा तोरु मिग त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थले मानवीय ग्वाली जोल विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री महावीर पुण्यता लल दिगु कसा अमेरिकी मानवीय संस्था सामरी ट्रान्सपोर्ट भोटेकोसी खुसीबास लिचो लापी समुदाय ग्वालिया नीति पिगु टन शिवे उप आपतकालीन राहत जोला
मिग ये ठेंका ह गुदु आदेशम पिनिया बुखा पाकिस्तानी छनुहे नेस झिन्नेस ये मासिबे उप अफगान शरणार्थी तथा गु मातृभूमि लिहा वोंगु अफगान आधिकारिक रेडियो व टेलिभिजन आरटीएन जानकारी बिगुख व मध्ये झिम्पेस पी गुमा पाकिस्तान स लिहा वे धुङ्क गुदुसा लिय द लिय दुपी सोस खुमा इरान पाखे लिहा वया सोङ्गुदु आ मौसम या जानकारी थौ दे या हिमालय पहाडी लगाया छुन थासे मल नापा लाप्सा तय भतिचा तस्क वा वैगु चपु कुहा वैगु सम्भावना दुसा कोशी सुदूरपश्चिम प्रदेश या तराई लगाया छुन थासे मधेस बागमती गण्डकी लुम्बिनी प्रदेश या तराई लगाया मोह थासे मल नापा लाप्सा तय भतिचा तस्क वा वैगु सम्भावना दु मधेस प्रदेश व लुम्बिनी प्रदेश या तराई या छुन थासे फे नापा वैगु सम्भावना दुसा कोशी बागमती व गण्डकी प्रदेश हिमाली व पहाडी लगाया लुम्बिनी कर्णाली सुदूरपश्चिम प्रदेश पहाडी लगाया छगुनीगु थासे आप्लाङ वा वैगु सम्भावना कुबिगु जल तथा मौसम विज्ञान विभाग या धापुदु वङ्गु निपे घौस सोनी ग या क्वाज निन हेगु फुटी गुगु डिग्री सेल्सियस दति चोङ्गु खसा थौन हिने ये सोनिग क्वाज नि च्यागु नि से सुइगु डिग्री सेल्सियस दति लुया वैगु दुकुमा दु थौ सुथे ये सोनिग ले न्याता इजुया सुइन हेगु मिनेटे लुया वगु सूर्य शनि लखुता इजुया नि च्यागु मिनेटे बि रेडियो नेपाल नेपाल भाषा समाचार पुवन झिताइले नेपाली भाषा समाचार नेना दिस सुभा

लासो फ्याफुल्ला तेनी मञ्जुश्री सम्मत 2862 तालो यान्दे लाला छेपाङी चुइसेङी विक्रम सम्मत 2083 साल भदौ लाला छेपा चुइसे भ्रे नारे बिहिबार छु रेडियो नेपाल हिन्न तामाङ साङ्गुरी राङ्द डेनमुला ङा सूर्य मोक्तान काइब्लुन भालेन्द्र साहसे भोटे कोसी गान्धी रेखा भाल डी परप्तासी थेथुम रिमुबा जलविद्युत आयोजनाला सुरुङ नाङ रिमुबा मिधा खाम्दे दोना योनबेमा योना उद्धार लासेलमुला विशेष संक्षेप मुला काइब्लुन थेन ब्लोन सेङजाङला गेदिम्री तिनी उज्यालो नेपाल पार्टीला चोहो थेन नाचला ब्लोन कुलमान घिसिङला छ्याम्री श्यान मुल्मी कते थेन रुप्ता सिलिङ मुला छुमान काइब्लुन साहसे सुरुङ नाङ रिमुबा मिला उद्धार लाबारी

यी सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दिवास थिक विजय झाचा सुनल जहाँ मैथिली भाषामे समाचार। प्रतिनिधि सभाके आजुक बैठकके आकस्मिक समयमे सांसद सब भोटे कोशी बाढ़िके कारण बेपत्ता तथा सम्पर्क विहीन भेल नागरिक सबके परिवारजन प्रति सरकारके जवाबदेहिता सुनिश्चित करबाक लेल माग कयलनि अछि। बैठकमे सांसद सब बाढ़ प्रभावित क्षेत्रमे जल विद्युत आयोजनामे कार्यरत बेपत्ता व्यक्ति आ पर्यटक सबके खोजी आ उद्धारके तीव्रता देबाक सङ्गे प्रभावित परिवार उठाउने प्रश्नमे सरकार स्पष्ट जवाब देबाक चाही बतौलनि। सांसद सब बाढ़ सँ प्रभावित क्षेत्र में स्वास्थ्य शिविर संचालन का संभावित महामारी के नियंत्रण करबाक संगे घायल के समय में उपचार आ मृतक के परिवारजन के आवश्यक मनोसामाजिक परामर्श के आवश्यकता मिलेबाक चाही पर जोर दिलनि। अहिना एकटा त्रिपाल के नीचा बहुत गोटे रहक लेल बाध्य प्रभावित महिला किशोरी तथा बाल बालिका के गोपनीयता सुरक्षा मर्यादा सुनिश्चित होयबा सन सुरक्षित आवास के व्यवस्था करबाक लेल सांसद सब सरकार के आग्रह कयलनि। सांसद सब बाढ़ सँ परिवार गेल बाल बालिका के तत्काल पहचान शिक्षा के निरंतरता उचित व्यवस्थापन आ संरक्षण के जिम्मेवारी सरकार के लेबाक चाही। प्रभावकारी रूप में राहत वितरण करबाक चाही। अवरुद्ध मुख्य राजमार्ग तत्काल संचालन में अनबाक चाही। आवश्यक उद्धार उपकरण के व्यवस्था करबाक लेल तथा सड़क दुर्घटना न्यूनीकरण करबाक लेल लगायत के विभिन्न समसामयिक विषय में सेहो सरकार के ध्यान आकर्षण करौलनि। सरकार रसुआ के भोटे कोशी नदी में आल बाढ़ में मृत्यु भेल सबके सम्मान में भादो 22 गते राष्ट्रीय शोक बनेबाक निर्णय कयलक अछि। प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय सिंह दरबार में आई बैसल मंत्री परिषद की बैठक सँ बाढ़ में मृत्यु भेल सबके सम्मान में राष्ट्रीय शोक मनेबाक निर्णय कयने सरकार के प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकूद मंत्री सस्मित पोखरेल के जानकारी दिलनि। राष्ट्रीय शोक के दिन नेपाल भर के सरकारी कार्यालय तथा विदेश स्थित नेपाली दूतावास आ नियोग में राष्ट्रीय झंडा आधा झुकायल जायत। अहिना सरकार भादो 23 गते जेएनजी शहीद दिवस के अवसर पर देशे भर सार्वजनिक छुट्टी देबाक

25,000 मेट्रिक टन चीनी आयात करबाक स्वीकृति दिलक अछि। सरकार भोटेकोशी बाढ़ि पश्चात खोज तथा उद्धार में खटल गेल सुरक्षाकर्मी तथा राष्ट्र सेवक कर्मचारी के जोखिम भत्ता आ नाश्ता के खर्च उपलब्ध करबाक निर्णय कलक अछि। अहिना उद्धार के क्रम में घायल भेल के निःशुल्क उपचार तथा मृत्यु भेल मृतक परिवार के प्रति मृतक 10,00,000 राहत उपलब्ध करायत। मंत्री परिषद के बैठक से नेपाल प्रशासन सेवा अंतर्गत राजपत्रांकृत विशिष्ट श्रेणी के सचिव पद में नारायण प्रसाद भट्ट के बढ़ुआ का मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय कोशी प्रदेश के प्रमुख सचिव में पद स्थापन करवाक निर्णय कने प्रवक्ता एवं मंत्री पोखरेल अय के जानकारी दिलन। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह भोटेकोशी बाढ़ के कारण विभिन्न जल विद्युत आयोजना के सुरंग क्षेत्र में फसल सबके शीघ्र से शीघ्र उद्धार कैल जात बतौलने छे। सिंहदरबार स्थित प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय में आई उज्यालो नेपाल पार्टी के अध्यक्ष कुलमान घिसिंग सहित के प्रतिनिधिमंडल संघ के भेंट में सुरंग में फसल व्यक्ति के उद्धारक लेल विज्ञ सहित के टोली के प्रयास जारी रखने स्पष्ट कलन। भेंट में प्रधानमंत्री सुरंग में फसल नागरिक के सकुशल उद्धारक लेल सरकार स्रोत साधन आ जनशक्ति परिचालन करबाक बतौलन। अध्यक्ष घिसिंग रसुआ नुआकोट के प्रभावित क्षेत्र में राहत वितरण के तीव्र बनाबा सड़क संचाल के पूरा स्थापना स्थापित करबाक सुझाव सेहो देलन। परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल काठमांडू स्थित कूटनीतिक समुदाय के नेपाल में विपत आयल भोटेकोशी बाढ़ के घटना के संबंध में ब्रीफिंग कलन अछि। परराष्ट्र मंत्रालय में आई आयोजित कूटनीतिक ब्रीफिंग में विभिन्न देश के राजदूत कूटनीतिक नियोग के प्रमुख तथा प्रतिनिधि विश्व बैंक एशियाई विकास बैंक एवं संयुक्त राष्ट्र संघ लगायत अंतर्राष्ट्रीय संघ के संस्था के प्रतिनिधि उपस्थित छले। मंत्री खनाल रसुआगढ़ स्थित भोटेकोशी नदी में गत भादो 10 गते आल विनाशकारी बाढ़ से आल विपद के पिछला अवस्था सरकार के खोज तथा उद्धारक प्रयास विदेशी नागरिक के अवस्था तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संदर्भ में सेहो एहि क्रम में अवगत करौलन। मंत्री खनाल सरकार के प्राथमिकता प्रभावित नागरिक के जीवन रक्षा खोज तथा उद्धार आ विदेशी नागरिक के सुरक्षा रहल बतौलन। बाढ़ से रसुआ नुआकोट धादिंग गोरखा आ चितवन के विभिन्न क्षेत्र में समुदाय तथा भौतिक पूर्वाधार में गंभीर असर पड़ल जानकारी दिलन। सरकार विपद के कारण अय के विकास क्रम के संबंध में अध्ययन कर रहल जानकारी दैत मंत्री खनाल अय के लिए संबंधित प्राविधिक विज्ञ के सहयोग सेहो लड़ रहल बतौलन। विपद के कठिन घड़ी में नेपाल के पड़ोसी मित्र राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से प्राप्त ऐक्यबद्धता आ सहयोग प्रति आभार व्यक्त कलन। ओ सरकार उपलब्ध सब राष्ट्रीय स्रोत परिचालन करत अंतर्राष्ट्रीय साझेदार संग नजदीक से सहकार्य जारी रखने आ कूटनीतिक समुदाय के विपद के अवस्था के संदर्भ में नियमित रूप में जानकारी करबित जायब से बतौलन। रसुआगढ़ी भोटेकोशी नदी में भादो 10 गते आल विनाशकारी बाढ़ पश्चात अखनो 4,216 गोटे संपर्क विहीन रहल अछि। बाढ़ से अधिक मानवीय तथा भौतिक क्षति भेल बावजूदो सुरक्षा निकाय खोज तथा उद्धार कार्य के तीव्रता दिन ही अछि। राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण आ सार्वजनिक ने विवरण हिसाबे संपर्क विहीन में नेपाली सेना के 45, नेपाल प्रहरी के 25 आ सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल के 13 गोटे रहल अछि। अहिना का भन्सार कार्यालय के 14, अध्यागमन कार्यालय के 3 तथा रसुआ के करीब 865 गोटे संपर्क विहीन अछि। प्राधिकरण के हिसाबे नुआकोट के 1,558, विदेशी नागरिक 583 तथा पर्यटक संग गेल 164 गोटे नेपाली सेहो संपर्क विहीन अछि। जल विद्युत आयोजना में कार्यरत करीब 900 लांगटांग राष्ट्रीय निकुंज के 3, क्वारंटीन कार्यालय के 3, जनप्रतिनिधि 7, स्थानीय तह तथा माथात के कर्मचारी 32 आ निजी विद्यालय के 101 शिक्षक संपर्क विहीन रहल विवरण में उल्लेख है। प्राधिकरण के प्रवक्ता शांति महत के हिसाबे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में नेपाली सेना नेपाल प्रहरी आ सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल के कका 21,402 सुरक्षाकर्मी परिचालन कैल गेल अछि। खोज तथा उद्धार में नेपाल प्रहरी के 7,912, नेपाली सेना के 9,287 आ सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल के 4,203 सुरक्षाकर्मी खटल अछि। बाढ़ से प्रभावित मध्य अखन धरि 5,135 गोटा के उपचार कैल गेल प्राधिकरण जनौलक अछि। विभिन्न अस्पताल में 301, नेपाली सेना से 3,206 आ सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल से 1,628 गोटे स्वास्थ्य उपचार सेवा पौने अछि। अखन 3,948 गोटे होल्डिंग सेंटर में राखल गेल प्राधिकरण जनौलक अछि। बाढ़ में पड़ि अखन धरि मृत्यु भेल के संख्या

1252 पहुंचल अछि। प्राधिकरण के प्रवक्ता महत के हिसाबे रसुआ में 127, नुआकोट में 177, धादिंग में 60, गोरखा में 69, नवलपरासी पूर्व में 218, नवलपरासी पश्चिम में 208, तनहु में 38 आ चितवन में 355 गोटा के शव भेटल अछि। रसुआ के भोटेकोसी नदी में बीतल भादो 10 गतियाल विनाशकारी बाढ़ पश्चात संपर्क विहीन भेल सबके खोजी आ उद्धार के क्रम जारी अछि। मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालय के तथ्यांक हिसाबे मंगल दिन साँझ धरि में अई बाढ़ में मधेश प्रदेश के संपर्क विहीन 195 गोटे मध्य 30 गोटा मात्र संपर्क में आल 165 गोटे अखनो संपर्क विहीन अवस्था में छ। एम्हर बाढ़ प्रभावित के लिए स्थानीय संघ संस्था आम नागरिक स्वस्थ फूर्त रूप में सरकारी राहत तथा उद्धार कोष में अपन अपन क्षमता हिसाबे रकम जमा कर रहल अछि। राजविराज समाचारदाता के हिसाबे भोटेकोसी क्षेत्र में आयल बाढ़ आ भूस्खलन पश्चात सप्तरी के 12 इंजीनियर सहित 48 गोटे अखनो संपर्क विहीन अछि। जिला प्रशासन कार्यालय सप्तरी के हिसाबे बाढ़ आ भूस्खलन पश्चात संपर्क विहीन भेल 52 गोटे मध्य बुध दिन धरि 3 गोटे संपर्क में आयल छथि त 1 गोटे के शव भेटल अछि, बाकी 48 गोटे संपर्क विहीन अवस्था में अछि। संपर्क विहीन मध्य इंजीनियर के संख्या 12 होब घटना के गंभीर पक्ष के रूप में देखल जा रहल अछि। रोजगारी के क्रम में सप्तरी से रसुआ नुआकोट लगाए जिला के जल विद्युत तथा पूर्वधारा योजना में पहुंचल प्राविधिक जनशक्ति बाढ़ आ भूस्खलन के चपेटा में पड़ल छल। बाढ़ आ भूस्खलन के कारण मुख्य राजमार्ग तथा सड़क अवरुद्ध भेला से अत्यावश्यक सामान के ढुआनी में किछ चुनौती देखल गेल बावजूदो साल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड खाना बनावे वाला गैस नून खाद्यान्न के अभाव नहीं हाथ से बतौलक अछि। अति आवश्यक सभी सामान के आपूर्ति के सहज बनौने अभाव होबय नहि देब से संस्था के पदाधिकारी के कहब छन्। मुख्य सड़क अवरुद्ध भेलाक बाद वैकल्पिक मार्ग प्रयोग कऽ आपूर्ति व्यवस्था निरंतर कायम कयल गेल कॉर्पोरेशन जनौलक अछि। कॉर्पोरेशन के नायब प्रमुख कुमार राज भंडारी के हिसाबे कृष्ण भीड़ में आयल भूस्खलन के कारण नियमित मार्ग से सामान में ढुआनी में समस्या देखल गेल। हथौड़ा आ दक्षिण काली दिश के वैकल्पिक मार्ग के प्रयोग कऽ आवश्यक सामान तथा गैस के आपूर्ति भ रहल अछि। वैकल्पिक मार्ग से सेहो आपूर्ति व्यवस्थापन करय नेपाल सरकार निर्णय कयलाक बाद वह हिसाबे ढुआनी के निरंतरता देल गेल हो जानकारी देलनि। मुख्य सड़क अवरुद्ध भेला से बाट में रोकल गेल गैस बुलेट के सेहो वैकल्पिक व्यवस्था मार्फत व्यवस्थापन कयल गेल अछि। सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दीवास से सुनि रहल मैथिली भाषा में समाचार पूरा भेल।

ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। भोटे कोसी बाढ़ के दौरान लापता व्यक्तियों की खोज तथा बचाव कार्य जारी। आज 6 लोगों का किया गया उद्धार। भोटे कोसी बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के सम्मान में भाद्र 22 गते राष्ट्रीय शोक मनाने का सरकार का निर्णय। भाद्र 23 गते जेंजी दिवस के अवसर पर सार्वजनिक छुट्टी। पृथ्वी राजमार्ग के अंतर्गत कृष्णभीर में वैकल्पिक मार्ग खोलने के लिए अध्ययन शुरू। और दीर्घकालीन विकास लक्ष्यों के लिए व्यापक क्षेत्रीय नेटवर्क में निवेश करने का संयुक्त राष्ट्र संघ का आह्वान। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने भोटे कोसी बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के सम्मान में भाद्र 22 गते राष्ट्रीय शोक मनाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय सिंह दरबार में आज हुई मंत्रिपरिषद बैठक ने भाद्र 22 गते नेपाल भर के सरकारी कार्यालयों तथा विदेश स्थित नेपाली दूतावासों और नियोगों में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुकाकर राष्ट्रीय शोक मनाने का निर्णय किया है। सरकार के प्रवक्ता एवं शिक्षा मंत्री सस्मित पोखरेल ने यह जानकारी दी। इसी तरह भाद्र 23 गते जेंजी शहीद दिवस के अवसर पर देश भर सार्वजनिक छुट्टी देने का निर्णय किया गया है। प्रवक्ता पोखरेल ने यह जानकारी दी। बैठक ने भोटे कोसी बाढ़ के बाद खोज एवं बचाव कार्य में तैनात सुरक्षा कर्मियों तथा राष्ट्र सेवक कर्मचारियों को जोखिम भत्ता और खाजा खर्च उपलब्ध कराने का निर्णय भी किया है। बचाव कार्य के दौरान घायल होने पर निःशुल्क उपचार तथा मृत्यु होने की स्थिति में मृतक के परिवार को प्रति व्यक्ति 10,00,000 रुपए राहत उपलब्ध कराने का भी निर्णय किया गया है। बैठक ने भोटे कोसी बाढ़ प्रभावित लोगों की जीवन रक्षा तथा तत्काल आपातकालीन खोज बचाव और राहत कार्यों के लिए एशियाई विकास बैंक से प्राप्त होने वाले 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान को स्वीकार करने का निर्णय किया है। बाढ़ प्रभावित नागरिकों तथा व्यवसायों के तत्काल पुनरुत्थान के लिए राहत कर तथा महसूल में छूट सहित विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्णय भी किया गया है। इसी तरह बाढ़ प्रभावित व्यक्ति उद्योग व्यापार तथा व्यवसाय को तत्काल सुचारू करने के लिए एकीकृत व्यवसायिक पुनरुत्थान योजना के तहत राहत कर तथा महसूल में छूट और अन्य सहूलियत एवं सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। बैठक ने कुल 25,000 मैट्रिक टन चीनी एवं प्रतिशत सीमा शुल्क पर आयात करने की अनुमति देने का निर्णय भी किया है। मंत्रिपरिषद बैठक ने नेपाल प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूह के राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी के सचिव नारायण प्रसाद भट्ट को पदोन्नत कर कोसी प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय के प्रमुख सचिव के पद पर पदस्थापन करने का निर्णय भी किया है। रसुआ की भोटे कोसी नदी में आई विनाशकारी बाढ़ के कारण लापता लोगों की तलाश आज भी जारी है। इस क्रम में भोटे कोसी बाढ़ में लापता हुए 6 लोगों का नेपाली सेना ने उद्धार किया है। नेपाली सेना द्वारा जारी अपडेट के अनुसार लामटांग और चिलमे हाइड्रो कंपनियों के टनल में विदेशी नागरिकों समेत खोज एवं बचाव दल द्वारा तलाश जारी है। इसी क्रम में त्रिशूली 3A में नेपाली और चीनी तकनीकी विशेषज्ञों सहित 93 लोगों की संयुक्त खोज एवं बचाव टीम तथा त्रिशूली 3B में नेपाली सेना के 83 गैर सैन्य कर्मियों और आयोजन के प्रबंध निर्देशक सहित संयुक्त खोज एवं बचाव दल द्वारा तलाश जारी है। इसी बीच नेपाली सेना के प्रधान सेनापति अशोक राज सिग्देल ने आज हाइड्रो कंपनियों के टनल तथा अन्य क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने सभी संबंधित निकायों के बीच प्रभावी समन्वय और सहयोग के साथ उच्च मनोबल बनाए रखते हुए खोज एवं बचाव कार्य जारी रखने का निर्देश किया है। रसुआ की भोटे कोसी नदी में आई विनाशकारी बाढ़ के कारण अब तक 1,252 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। नेपाल पुलिस के अनुसार इनमें रसुआ में 127, नुआकोट के 177, धादिंग से 60, चितवन से 355, गोरखा से 69, तनहू से 38, नवलपरा

0: प्रक्रिया पूरी की जा रही है। अब तक 201 महिलाओं, 327 पुरुषों और 369 अज्ञात शवों सहित कुल 897 शवों को सुरक्षित रूप से मिट्टी के नीचे दफन कर रखा गया है। नेपाल पुलिस ने पहचान नहीं हो पाए 1052 शवों का विवरण अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है। इसी तरह बाढ़ के बाद अब तक 4798 लोग लापता है। नेपाल पुलिस के नेतृत्व में लापता लोगों की खोज तथा तलाश का कार्य जारी है। परराष्ट्र मंत्रालय ने जानकारी दी है कि रसुआ की भोटेकोसी बाढ़ में 34 देशों के 590 विदेशी नागरिक लापता है। मंत्रालय के नियमित प्रेस ब्रीफिंग में प्रवक्ता लोक बहादुर पौड़ेल छेत्री ने आज बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से करीब 300 विदेशी नागरिकों सहित अब तक 11993 लोगों का उद्धार किया गया है। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में 2 अंतर्राष्ट्रीय समझौते पेश किए गए। ऊर्जा, जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्री विराज भक्त श्रेष्ठ ने नेपाल भारत के बीच दीर्घकालीन विद्युत व्यापार संबंधी समझौता पेश किया। समझौते के तहत आगामी 10 वर्षों में नेपाल से भारत को 10,000 मेगावाट बिजली निर्यात करने का लक्ष्य रखा गया है। कानून, न्याय तथा संसदीय मामलों की मंत्री शोभिता गौतम ने समुद्री जैविक विविधता के संरक्षण और उपयोग से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समझौता सदन में पेश किया। बैठक ने बाल श्रम निषेध तथा नियमित करने विधेयक 2083 को दफावार चर्चा के लिए संबंधित संसदीय समिति में भेजने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया। सांसदों ने रसुआ की सुरंग में फंसे लोगों के खोज एवं बचाव कार्य में तेजी लाने के लिए भी सरकार से मांग की है। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक भाद्र 24 गते बुधवार दोपहर 1 बजे होगी। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं अब कुछ देर विज्ञापन।
1: ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
2: सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
1: यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
2: पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
1: किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसीको कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
2: ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
1: सेवा सुचारू गर्नका लागि *14# डायल गर्नुहोस्।
3: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।
0: अब बाकी समाचार। रसुआ की भोटेकोसी बाढ़ के कारण चीन के केरुंग क्षेत्र में फंसे 114 नेपाली नागरिक आज तातोपानी नाका होते हुए नेपाल लौट आए। तातोपानी अध्यागमन कार्यालय के अनुसार चीन ने सुरक्षित रह रहे नेपाली नागरिकों को पासपोर्ट नंबर सहित आवश्यक विवरण के साथ नेपाली अधिकारियों को सौंपा है। लौटने वालों में अधिकांश सिंधुपाल्चोक, नुआकोट और रसुआ के नागरिक है। रसुआगढ़ी नाका और पासांग लामू राजमार्ग बाढ़ से क्षतिग्रस्त होने के बाद ये लोग केरुंग में फंस गए थे। भोटेकोसी और त्रिशूली नदी में आज भी अचानक बाढ़ का उच्च जोखिम बना हुआ है। बाढ़ पूर्वानुमान महाशाखा की बाढ़विद सरस्वती बिष्ट के अनुसार भोटेकोसी के ऊपरी तटीय क्षेत्र में बारिश हो रही है और लोग आगे भी बारिश होने की संभावना है। इससे रसुआ और नुआकोट से होकर बहने वाली भोटेकोसी, त्रिशूली तथा आसपास की छोटी नदियों में जलस्तर तेजी से बढ़ सकता है। महाशाखा ने नदी और नाले के आसपास रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और आवश्यक सावधानी अपनाने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने उज्जवलो नेपाल पार्टी के अध्यक्ष कुलमान घिसिंग ने मुलाकात की है। सिंहदरबार स्थित प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय में आज हुई मुलाकात में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे खोज बचाव और राहत कार्यों सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री के सचिवालय ने यह जानकारी दी। मुलाकात में प्रधानमंत्री शाह ने सुरंग में फंसे नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए सरकार द्वारा हर संभव संसाधन और जनशक्ति परिचालन करने की बात कही। इसी तरह प्रधानमंत्री शाह से नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के नेता वर्षमान पुन ने भी मुलाकात की है। प्रधानमंत्री के सचिवालय के अनुसार मुलाकात में रसुआ बाढ़ और उसके बाद चल रहे खोज बसाव, उपचार तथा राहत वितरण सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। दोनों के बीच बाढ़ से प्रभावित बुनियादी ढांचे को पुनः

0: सुचारू करने के विषय पर भी विचार विमर्श हुआ। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए क्षेत्रीय सहयोग और दीर्घकालीन विकास बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाने का आह्वान किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार गरीबी उन्मूलन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य, ऊर्जा की पहुंच, जलवायु अनुकूलन क्षमता, रोजगार तथा टिकाऊ बुनियादी ढांचे के निर्माण जैसे क्षेत्रों में केवल किसी एक देश का प्रयास पर्याप्त नहीं है, इसलिए क्षेत्रीय स्तर पर साझा योजना और निवेश आवश्यक है। विशेष रूप से ऊर्जा, परिवहन, डिजिटल कनेक्टिविटी और व्यापार नेटवर्क को मजबूत करने से विकास की गति बढ़ाने के साथ साथ क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था और अधिक एकीकृत करने में मदद मिलेगी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की क्षेत्रीय पहलों ने भी सार्वजनिक क्षेत्र, विकास बैंकों, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज के बीच सहयोग के माध्यम से दीर्घकालीन और जलवायु लचीली परियोजनाओं में निवेश जुटाने पर जोर दिया है। ऐसे क्षेत्रीय तंत्र का उद्देश्य निवेश में दोहराव को कम करना, संसाधन जुटाना और विभिन्न देशों की प्राथमिकताओं को एक साझा विकास ढांचे से जोड़ना है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.7 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भोटे कोसी बाढ़ के दौरान लापता व्यक्तियों की खोज तथा बचाव कार्य जारी, आज 6 लोगों का किया गया उद्धार। भोटे कोसी बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के सम्मान में भाद्र 22 गते राष्ट्रीय शोक मनाने का सरकार का निर्णय। भाद्र 23 गते जयंती दिवस पर सार्वजनिक छुट्टी। पृथ्वी राजमार्ग के अंतर्गत कृष्णभीर में वैकल्पिक मार्ग खोलने के लिए अध्ययन शुरू और दीर्घकालीन विकास लक्ष्यों के लिए व्यापक क्षेत्रीय नेटवर्क में निवेश करने का संयुक्त राष्ट्र संघ का आह्वान। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।
1: सादा खाना 100 रुपियाँ, मटन खाना 200 रुपियाँ। ओ मोबाइलको डाटा पनि हामीले चलाएको मेनु अनुसार महँगो र सस्तो पर्नु पर्ने होइन र?
2: हुन्छ नि मित्र, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, भाइबर, वाट्सएप जस्ता सामाजिक सञ्जालहरू मात्रै चलाउने हो भने नेपाल टेलिकममा असाध्यै सस्तो मूल्यमा सोसियल मिडिया डाटा प्याक पाइन्छ। त्यही लिने मजाले चलाउने
1: स्टार 14-15 #डायल गर्नुहोस्।
3: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।

बहुत बहुत स्वागत है रेडियो नेपाल के प्रस्तुति और आप सबके प्यार व मिठास भरे हिंदी सदाबहार गीतों के कार्यक्रम मधुरिमा में, और मैं हूं मुकेश कुमार मिश्र, और प्राविधिक रूप में हमारा साथ दे रहे हैं प्राविधिक मित्र सुधीर मिश्र जी। जी दोस्तों, मीटिंग में 576, 648, 684, 792, 810 और 1143 किलो मेगाहर्ज के साथ साथ एफएम बैंड 98, 100 और 103 मेगाहर्ज पर, साथ ही ऑनलाइन के माध्यम से www.radionepal.gov.np और www.onlineradionepal.gov.np पर आप मधुरिमा कार्यक्रम को लाइव सुन रहे हैं। इसे आप रेडियो नेपाल के मोबाइल ऐप पर भी लाइव सुन सकते हैं, और इसके अलावा बहुत से मित्र मधुरिमा हिंदी फेसबुक पेज के माध्यम से लाइव देख भी रहे हैं। तो जो नहीं देख रहे हैं उनसे भी आग्रह है कि अगर आप देखना चाहते हैं तो मधुरिमा कार्यक्रम के फेसबुक पेज मधुरिमा हिंदी को लाइक और फॉलो करें, ताकि जैसे ही कार्यक्रम शुरू हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप लाइव कार्यक्रम के साथ जुड़ जाएं और अपने मन की बात लाइव कमेंट के जरिए साझा भी कर पाएं, और किसी कारणवश लाइव न भी देख पाएं तो बाद में भी इसे मधुरिमा हिंदी फेसबुक पेज पर देख सकेंगे। साथ ही साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि जो नए मित्र भी इस कार्यक्रम के साथ जुड़ें, जो अब तक नहीं जुड़े हैं, और वे भी इस मधुरिमा के बड़े परिवार का हिस्सा बने। हर गुरुवार रात 10 बजे हिंदी समाचार के तुरंत बाद आज फोन और पत्र दोनों के साथ मैं उपस्थित हूँ। आप हमारे स्टूडियो में फ़ोन पर लाइव बातचीत भी कर सकते हैं, और आप कमेंट भी खूबसूरत खूबसूरत भेज सकते हैं, जो कि हम ऑनलाइन ऑन एयर लाइव पढ़ें भी। और साथ ही हमारे स्टूडियो में फ़ोन पर बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो के नंबर हैं 01421 और 01436। और जो नेपाल के बाहर से बाहर के श्रोता हैं उन्हें डायल करना होगा +97714211721 और 411736। और सबसे पहले तो आप सबको जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, भगवान कृष्ण की सब पर दुआ हो, आशीर्वाद हो, सबका कल्याण हो। और ये पहला पत्र है RS विजय कुमार जी का, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश, भारत से। ये लिखते हैं कि रेडियो नेपाल से प्रसारित होने वाले साप्ताहिक हिंदी कार्यक्रम मधुरिमा के प्रस्तुतकर्ता मुकेश जी, रमिता जी, सीमा जी एवं कार्यक्रम संचालक पुष्परत्न जी को विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश, भारत से आपका प्रिय श्रोता RS विजय कुमार का सादर अभिवादन। बड़ा ही मार्मिक पत्र इन्होंने लिखा है। इन्होंने लिखा कि उत्तरी नेपाल के रसुवा क्षेत्र में अचानक आई भीषण बाढ़ का प्रकोप जब टीवी पर देखा तो मन एकाएक स्तब्ध रह गया। प्रकृति का भयानक प्रलय तांडव अपने चरम सीमा पर था। सारे लोग रिहायशी इलाके सबके सब पल भर में इस तबाही का शिकार हो गए। प्रकृति के प्रकोप के सामने मनुष्य लाचार एवं बेबस हो गया। प्रकृति कब अपना उग्र रूप धारण कर विनाश की ओर अग्रसर हो जाती है, इसका अंदाजा इंसान के समझ से बाहर होता है। हमें प्रकृति से प्रेम करना है, उसकी अपार सौंदर्य को मन से निहारना चाहिए, प्रकृति से कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल। आगे लिखते हैं कि नेपाल में घटी इस प्राकृतिक आपदा से निपटने में भारत एवं भारतीय जनता सदैव सहयोग करने में सक्षम है। एक पड़ोसी देश की पीड़ा हमारी पीड़ा समझकर हम लोग आपका साथ देंगे। इस भीषण तबाही में मारे गए लोगों को मेरी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि। आपका प्रिय श्रोता RS विजय कुमार, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश, भारत से। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इस मार्मिक पत्र के लिए, और साथ ही इस आश्वासन के लिए कि हम जानते हैं, हमने बहुत बार यह महसूस किया है, हमने देखा है कि जब भी हम पर विपत्ति आई है, जब भी हम पर आपदा आई है, जब हम कष्ट में होते हैं, तो पड़ोसी देश और मित्र देश भारत से हमें बहुत सारी सुविधाएं मिली हैं, बहुत सारी मदद मुहैया कराई गई हैं, और इसके लिए पूरे नेपाल देशवासी हम भारत के प्रति आभारी हैं। हम जानते हैं आपका दिल काफ़ी बड़ा है, और यही सद्भाव हमेशा बना रहे, यही हम भगवान श्री कृष्ण से, पशुपतिनाथ से विनती करते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया RS विजय कुमार जी इस पत्र के लिए। और कार्यक्रम का सांगीतिक आगाज करते हैं इस गीत से। हालांकि इन्होंने गीत की फरमाइश नहीं की है, पर फिर भी मुझे लगता है कि इस संदर्भ में, इस परिस्थिति में ये गीत बहुत ही सांदर्भिक है। तो आइए सुनते हैं ये भजन।

0: ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ों में फिल्म लगान से जो कि सन 2001 में रिलीज हुई थी। इसके गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीतकार AR रहमान। और कुछ होता हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम मधुरिमा में। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से?
1: जी नमस्कार।
0: जी नमस्कार जी। राम पुकार राय जी?
1: जी राम पुकार राय जी।
0: दीपी ही रोथट से?
1: जी दीपी रोथट से।
0: कैसे हैं राम पुकार जी?
1: जी हम तो अच्छे हैं, लेकिन देश का स्थिति भोटे खुशी रसूबा का सुनकर थोड़ा सा दुखित है। सब लोग दुखित है, शोक में है जी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, पूरा देश दुखी है। और ऐसे समय में जो एक आत्मीयता होनी चाहिए वो दिख भी रही है पूरे देश से। लोग एकदम देश सन्न है और सब जिनसे जो बन पड़ रहा है लोग मदद मुहैया करा रहे हैं। हर जगह जगह से, गांव गांव से गरीब लोग जो हैं वो पीड़ितों की मदद के लिए हाथ उठा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और ये बहुत काफ़ी दिनों के बाद एक एकता की इस तरह की भावना उजागर हुई है और सामने आई है। ये बहुत खुशी की बात है। तराई से भी लोग देखते हैं कि बूढ़े लोग खुद अपने तन पे उतने कपड़े अच्छे नहीं हैं, साइकिल पुरानी है, टूटी हुई है, पर फिर भी वो जो ही बन पड़ रहा है वो लेकर के आ रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है, ये बड़ी खुशी की बात है इस दुखद घड़ी में जी। आपके यहाँ से
1: तो तराई वासी है, हम लोग तराई वासी है, मदद करना हमारे नेपाली को हमारा कर्तव्य बनता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सब यही दुआ करें और इसी तरह से ये जो अभी दिखा रहे हैं यही भावना हमेशा बनी रहे। और कोई गाना फरमाइश करना चाहेंगे राम पुकार जी?
1: गाना तो आप जानते ही है, कल जन्माष्टमी है, कृष्ण भगवान के जन्म के दिन के उपलक्ष्य में एक बार और हम फरमाइश किए थे, अरे कन्हैया एक ने जन्म दिया एक ने पाला तो किसको कहेगा मैया,
0: किसको कहेगा तुम्हारी। इस गाने का हमने सुनवाया भी था शायद,
1: फिर एक बार हो गया जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में दूसरे दिन।
0: जी जी जी जरूर, इस गाने को भी जरूर सुनवाएंगे। हालांकि जब अगले एपिसोड में मैं आऊँगा तब तक जन्माष्टमी बीत चुकी होगी, लेकिन फिर से सुनेंगे, कोई दिक्कत नहीं, भगवान का भजन है। बहुत बहुत शुक्रिया राम
1: जी। अब हमारे देश में ऐसा स्थिति है तो कम से कम कृष्ण भगवान का स्तुति होना एकदम जरूरी है।
0: बिल्कुल। और अभी अभी हम आपको कृष्ण भगवान का ही गीत सुनवाएंगे। और एक बार आपको भी और तमाम श्रोताओं को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं राम पुकार जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमें फ़ोन करने के लिए। और ये थे राम पुकार राय जी दीपी रोथर से। और फिर से कुछ होता हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम मधुरिमा में। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से?
2: हेलो, राम कृपाल ठाकुर, थरवाही जलेश्वर बाड़ा।
0: राम कृपाल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, कैसे हैं?
2: दिल में दर्द होता है मुझे भूख, बल्कि हम मर जाते लेकिन हमारा देश का कुछ नहीं होता, सब उससे
0: क्या बात, क्या बात है। आज हर दिल में यही भावना है और यही एक आशीर्वाद है, दुआ ही निकलती है, मदद ही निकलती है, ये अच्छी बात है। ये इस दुखद घड़ी में ये एक
2: मर जाएंगे, हाँ मर जाए उसमें कोई परवाह नहीं,
0: नहीं मरना किसी को,
2: हमारे देश में कुछ भी होता है तो दिल में दर्द।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मरना किसी को नहीं है, हालांकि होनी है, होने को कौन टाल सकता है, लेकिन उधर तो सब ठीक है तराई में जलेश्वर में?
2: जी सब ठीक है, आप लोगों की आशीर्वाद है, सब ठीक है।
0: चलिए कोई गीत फरमाइश करना चाहेंगे?
2: गीत फरमाइशी ध्यान जन्माष्टमी के साथ अपने अपने को पूरा परिवार को, सुधीर बाबू को पूरा परिवार, सुधीर मिश्र जी ना आज है,
0: आज सुधीर मिश्र जी, हाँ बिल्कुल,
2: उनको भी पूरा परिवार को सब को हम माने क्या कर भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं कि 100 वर्ष 200 वर्ष निक से रहे अच्छा का। जितने श्रोता सुनते हैं हमारे राम पुकार राय जी, जितने श्रोता फोन करते हैं वो सबको हम शुभकामना देते हैं, और क्या कहें
0: जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से भी आपको, सब परिवार को। और एक बार फिर से तमाम श्रोताओं को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण आप सबके घर में विराजमान हो, उनकी कृपा सब पर बनी रहे जी। कोई गीत फरमाइश करना चाहेंगे?
2: फरमाइश आप वही भगवान का गीत
0: कोई भी सुना दे,
2: आप अपने खुद कलाकार हैं तो आपको हम क्या कहें
0: जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप राम कृपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए। और ये थे राम कृपाल जी। और अब हम गाने की ओर चलना चाहेंगे। भगवान कृष्ण के भजन की फरमाइश आ ही चुकी है और वैसे भी कल जन्माष्टमी है तो बनता भी है, तो अब हम भगवान श्री कृष्ण का एक भजन सुनेंगे लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म अमर प्रेम से।

0: ये गाना हमने सुना फिल्म अमर प्रेम से, जो कि सन 1972 में रिलीज हुई थी, लता मंगेशकर की आवाज़ में। इसके गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार आर डी बर्मन। और फिर से कुछ होता हमारे साथ जुड़े हैं जी। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम मधुरिमा में। कौन बोल रहे, कहाँ से?
1: हेलो
0: जी, स्वागत है।
1: दुभी
0: प्रस्टोकी से बैद्यनाथ चौधरी।
1: बैद्यनाथ चौधरी
0: जी, कैसे हैं बैद्यनाथ जी?
1: एकदम बिल्कुल सही है,
0: बिल्कुल अच्छे हैं।
1: और सर के कैसा है समाचार?
0: जी इधर भी बहुत अच्छा है। और
1: मगर ये बात है
0: मेरा व्यक्तिगत, लेकिन देश की
1: रसुआ का घटना जो है, ये प्रकृति अबदाई, इससे थोड़ा नाराज तो हुए हूँ, दुखी हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल, पूरा देश दुखी है।
1: दुखी है, हाँ जी।
0: और हम दुआ ही कर सकते हैं,
1: दुआ कर रहे हैं सबसे, भगवान से दुआ कर रहे हैं। जो भी मतलब इसमें जो फंसे हैं, मतलब शहीद हो गए हैं, मैंने उन लोग का भी दुआ कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं कि आत्मा भी ना तड़पे।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सबको सदगति मिले।
1: हाँ सदगति मिले, ना भटके। तो इस आधार से मतलब उस आत्मा भटकने के बाद में तो दुनिया में, समाज में त्रास फैलेंगे।
0: जी बिल्कुल, और
1: इसलिए योगदान दे रहे हैं।
0: और चलिए, हाँ, और हर क्षेत्र से जिस तरह से लोग राहत के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं, मदद के लिए,
1: ये भी हम लोग किए हैं, हम भी किए हैं, हमारा जो संस्था है उस आधार पर वहाँ पर जमा करके भेजे हैं।
0: बहुत अच्छी बात।
1: और भी होता है, जो भी छूटे हुए हैं उन लोग से भी निवेदन कर रहा हूँ कि सभी को मने सहयोग का हाथ बढ़ना चाहिए इसमें।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: और इस आधार से,
0: और आज लगभग देश में ऐसा कोई नहीं होगा जो इस राहत कार्य में, इस आपदा की घड़ी में राहत देने में हाथ पीछे करता हो।
1: एकदम बिल्कुल, एकदम सब हाथ बढ़ा रहे हैं।
0: जी बिल्कुल,
1: और जो भी ऐसे जिनको मालूम नहीं है, उस पर बुद्धि ने खींचा जा रहा है, उसको भी इस तरह से संदेश देता हूँ कि मतलब इस पर लगना चाहिए सबको।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: जितना हम लोग सकेंगे उस आधार से सहयोग करेंगे
0: जी।
1: तो इस आधार से सबको मतलब समझा रहा हूँ, बुझा रहा हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है जी। कोई गीत फरमाइश करना चाहेंगे?
1: गीत तो फरमाइश हम थोड़ा सा गुनगुनाएंगे तो नहीं होगा सर?
0: जी जी, गुनगुनाएं।
1: ठीक है, जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी में सभी का दीर्घायु अच्छा हो। कृष्ण जैसे पवित्र है, शुद्ध है, स्वच्छ है, वैसे सबका दीर्घायु हो जाए।
0: जी आपको भी शुभकामनाएं जी, गुनगुनाएं।
1: तो हम गुनगुना रहे हैं, ठीक है। बंदी गहने जन्म लिया और पल भर वहां न ठहरा, हो

0: चे संदेश मानो वासुदेव आदेश, बालक लेकर जाओ नंद जी के द्वार की लीला तेरी तू ही जाने, तेरी माया का नजारा कोई पार की लीला तेरी तू ही जाने।
1: बहुत बढ़िया।
0: परवल चंचला टपरा कंस समान डराए, हो ऐसे में जिसको लेकर कोई बाहर कैसे जाए, हो प्रभु का सेवक शेष नाग जागे देखो इसकी भाग, तन से उसने रोका बरखा का भार की लीला तेरी तू ही जाने, माया का नजारा कोई पार की लीला तेरी तू ही जाने।
1: बहुत बढ़िया वेदना जी, बहुत बढ़िया गाते हैं। पिछली श्रृंखला में भी आपसे बताया था बहुत बढ़िया गाते हैं आप, रियाज व्याज क्या करें और जी इसमें आप बढ़िया हो सकते हैं।
2: दुआ लगी आप जो इसे अच्छा अच्छा वचन दे रहे हैं, दुआ लग जाए हम पर।
1: जी बिल्कुल, बड़े दिल से गाते हैं आप जी। कोई गाना फरमाइश करना चाहेंगे? ये तो
2: फरमाइश तो एक सुना दीजिए हमको, कन्हैया तेरी मुरली की तान सुना दी, मेरी मन में आग लगाई कन्हैया।
1: क्या बात है, जरूर सुनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए,
2: धन्यवाद।
1: और ये थे वैद्यनाथ चौधरी जी, बड़ा अच्छा गाया इन्होंने वाकई। और फिर से कुछ श्रोता हमारे प्रोजेक्ट मित्र इशारा करेंगे, कुछ श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम मधुमेह में, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से?
3: शंभू अधिकारी रोहतक से सर।
1: शंभू जी कैसे हैं?
3: ठीक हूँ सर, ठीक हूँ, दुखी हूँ तो बहुत जी। खुशी सर, नदी बाढ़ आ गया
1: जी, बिल्कुल तो, पूरा देश दुखी है। रोहतक कहाँ से हैं वैसे आप? फिर से बताए।
3: बोहरा नगर पालिका।
1: बोहरबा?
3: बोहरवा।
1: बोहरवा नगर पालिका जी। जी उधर बाढ़ ने उधर कितना प्रभाव दिखाया?
3: कोई भी प्रभाव नहीं, इधर बहुत ठीक ठाक है
1: उधर। बाढ़, ये बाढ़ इधर से निकल गई, ये बाकी होते हुए, बाकी बर्दिया होते हुए निकल गए जी। बिल्कुल,
3: इधर नहीं,
1: इधर कोई असर नहीं है। चलिए कुछ पेश करना चाहेंगे कार्यक्रम में?
3: कार्यक्रम में पेश तो क्या करें सर, मुझे एक भजन अनुप जलोटा साहब के, इसमें भगवान
1: जी कौन सा
3: कोई भी।
1: चलिए जरूर सुनवाएंगे, बहुत बहुत शुक्रिया शंभू जी। और ये थे शंभू अधिकारी जी बोहरबा रोहतक से। और फिर से हम गाने की ओर चलेंगे। और इस गाने की फरमाइश जो है हमारे बैद्यनाथ चौधरी जी ने किया था पिछली श्रृंखला में, और आइए सुनते हैं उनकी फरमाइश पर ये गीत। जय हो जय।

फिल्म केदारनाथ से गाना आपने सुना, इसमें आवाज और संगीत अमित त्रिवेदी जी का है और गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य। और कमालुद्दीन अंसारी जी लिखते हैं फेसबुक पेज कमेंट पर, ये सऊदी अरब में रहते हैं, इन्होंने लिखा है कि हमने भी बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए 10,000 रुपये बाढ़ से प्रभावित हुए लोगों के लिए सहयोग किया है, भगवान बाढ़ पीड़ित लोगों की रक्षा करें। बहुत बहुत शुक्रिया कमालुद्दीन जी आपके उदार हृदय के लिए। और राम पुकार राय जी ने इस गाने की फरमाइश की है, पहले भी की थी, और कुछ और श्रोता है जिन्होंने उनका समर्थन किया है कि हेरे कन्हैया किसको कहेगा तुम्हें, ये गाना एक बार हो ही जाए, तो हमने सोचा कि चलो सुन ही लिया जाए, ये अवसर भी है, तो आइए सुनते हैं ये गीत।

किशोर कुमार की आवाज़ में एक गीत आपने सुना, फिल्म छोटी बहू से, जो कि सन 1971 में रिलीज हुई थी। इसका गीतकार है इंदिवर और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। और कोई श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन प्रावधिक मित्र इशारा करें कि उनसे कनेक्शन कट हो गया है। दोस्तों 9800 और 103 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो नेपाल से अभी आप सुन रहे हैं हिंदी साप्ताहिक कार्यक्रम मधुरिमा, और कार्यक्रम के ऑफिशियल पेज मधुरिमा हिंदी फेसबुक के माध्यम से लाइव देख भी रहे हैं। तो आप सबसे फिर से निवेदन है कि मधुरिमा हिंदी के फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, और अपने दोस्तों को भी यही सलाह दें। और हमारे प्रावधिक मित्र भी अपनी ओर से एक गीत सुनाना चाहते हैं जन्माष्टमी के संदर्भ में, तो उसे भी हम सुन ही लेना चाहते हैं। और मेरे ख्याल से प्रावधिक मित्र हमारे तैयार हैं गाने को लेकर के, तो सुनते हैं ये गीत।

सिरहा लहान से रुपेश कुमार महतो जी ने पिछली श्रृंखला में फरमाइश की थी, और तब शिवजी का कांवर का मौसम चल रहा था और उस समय उन्होंने इस गाने की फरमाइश की थी। लेकिन भगवान शिव को कभी भी याद कर सकते हैं, और वैसे भी कोई भी पूजा हो, खासतौर पर भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं, कृष्ण हो, राम हो, उनकी पूजा हो, और वहाँ पर महादेव की पूजा ना हो या उनका जिक्र ना हो, ऐसा तो नहीं होता, तो हम कभी भी सुन सकते हैं और उनकी फरमाइश भी पूरी कर ही देते हैं आज। तो सुनते हैं ये गीत। उन्होंने कहा था कि चल रहे कांवरिया शिव के धाम, ये गाना आप सुनाएं, तो सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों अब हम कार्यक्रम के बिल्कुल अंत में आ चुके हैं, लेकिन एक गीत हम सुनेंगे ज़रूर। और पर उस गाने को रखने से पहले और आप सबसे विदा लेने से पहले कहना चाहते हैं दोस्तों, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है अपनी प्रतिक्रिया हमें पत्र के जरिए ज़रूर भेजें। साथ ही अपने पत्र में शेर व शायरी, कविता, गज़ल आदि ज़रूर शामिल करें। हमारा पता है कार्यक्रम मधुरिमा, रेडियो नेपाल, सिंह दरबार, काठमांडू, पोस्ट बॉक्स नंबर 634। हमारा ईमेल पता madhurimahindi@gmail.com। साथ ही फेसबुक पेज के जरिए भी आप अपनी बातें इस कार्यक्रम तक पहुँचा सकते हैं। इसके लिए आपको विजिट करना होगा www.facebook.com/madhurima-hindi। और अब हम सुनेंगे पुष्पांजलि फिल्म का जो ये गीत है, जो कि सन 1970 में रिलीज हुई थी मुकेश की आवाज़ में। इसके गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और इसी गाने को रखते हुए आज की मधुरिमा श्रृंखला से प्राविधिक मित्र सुधीर मिश्र के साथ मैं मुकेश कुमार मिश्र आप सभी से इजाज़त चाहते हैं। सुनते रहें रेडियो नेपाल। नमस्कार, शुभरात्रि।